0: करी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बनी का।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 5 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का ओल्ड इज गोल्ड का बेहतरीन प्रोग्राम। और वैसे मैंने आज सबको सरप्राइज दिया, सभी आप सभी को सबसे पहले ये महा नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली मैं अपने बिजी शेड्यूल में से मैं थोड़ा सा समय निकाल गया हूँ। मैं आज रहूँगा आप सबके साथ 8:30 बजे तक, इससे ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है, एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन सबसे पहले आप मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

वेलकम बैक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी सभी दोस्तों को मालूम नहीं है कि मैं आज आने वाला था, वैसे मैं अचानक से आ गया हूँ। मुझे जैसे समय मिला थोड़ा सा, बस मैं आप सबके बीच आ गया हूँ। और बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। जुड़ने वाले हैं आज सबसे पहले यानी काजल झक्का जी हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं काजल झक्का जी आपका, और आत्माराम पाटिल जी आपका भी वेलकम करता हूँ मैं। और उनके बाद हैं हमारे ईश्वरलाल इन साबले जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। साथ ही साथ अशोक कुमार जी जुड़ चुके हैं और यानी पटना से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी सर जी। और जाकिर खान जी वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। और प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, आपका भी वेलकम है। और सोनू गौतम जी आपका भी वेलकम है। तो आज का जो पहला प्रोग्राम, मतलब आज के प्रोग्राम का जो यानी पहला गीत मैं शामिल करने वाला हूँ, वो यानी कि प्रियंका जी का ही है। और प्रियंका जी सुनना चाहती हैं फिल्म राम लखन का ये बहुत ही प्यारा मुझे तुमसे कितने गिले।

है।

0: वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आने लगे हैं और बहुत से दोस्त जुड़ने लगे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। दीपक कुमार गायकवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी। संतोष गौंड जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है, नमस्कार करते हैं सभी दोस्तों को। मीना इब्राहिम जी यूएसए, बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम सलाम। और निशांत राय बोले जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी निशांत राय बोले जी। और प्रियंका जी का फीडबैक भी सुनते हैं।
1: ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं,
0: हम क्या करें,

0: बहुत ही प्यारा फर्स्ट सॉन्ग सुनाया अमन जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका भी। और सरिता सिन्हा जी जुड़ चुके हैं पटना बिहार से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सोनू गौतम जी जुड़ चुके हैं, लिख देंगे प्रियंका जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद।

और बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आए हैं। मंगेश दशमुख जी जुड़ते हैं, लिखते हैं सुपर सॉन्ग, धन्यवाद होते हैं। और सर्वजीत सेठी जी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सर्वजीत जी, सर्वेश भगत जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है सर्वेश भगत जी। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1989 के पैदान नंबर 10 पे बजा था सर मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलो कुछ शब्दों में, और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी, सुनकर मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अशोक देशमुख जी जुड़ते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और इस बात का अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो सर्वजीत सेठी जी का ही है, बस वो सुनना चाहते हैं इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा। बिल्कुल इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और सुनते हैं सरोज भगत जी क्या कहते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी शुभ संध्या नमस्कार नमस्ते जी, सरबीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं और इसका पहले जो भी भाई बहन गाना शामिल किए हैं सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते
0: हैं। वेलकम जी आपका। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं फिल्म छाया के ये गीत इतना ना मुझसे तो प्यार बड़ा सरोजी सरोजी जी के पसंद बहुत ही सुपरहिट लाजवाब लगी उनको धन्यवाद। विनयका जी क्या कहते हैं उनके सुनते हैं।
2: मुझे तुमसे है कितने गिले,
0: अच्छा
2: हाँ हाँ हाँ, तुम कितने दिन बाद मिले, क्यों क्यों क्यों बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो आपके आप इतने दिनों से छुट्टी पे थे ना तो ये सॉन्ग आपके ऊपर भी है।
0: अच्छा
2: बाकी शुक्रिया, बहुत प्यारा सॉन्ग सुनाया,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और मीना इब्राहिम लिखते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड है, बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी क्या,
3: अमन जी नमस्कार, एक फिल्म का डायलॉग था आपके पेट जमी पर मत रखना मेले हो जाएंगे, वैसे ही आप इतने दिनों बाद आए तो मुझे भी एक डायलॉग याद आ रहा है मेरे अंदर से कि आपकी आवाज़ बहुत दिनों बाद सुनने को मिली, दिल को सुकून आया, चैन आया, आराम आया, क्योंकि अमन जी जैसा कोई नहीं। धन्यवाद, मैं दीपक गायकवाड़ सुनी मालवा मध्य प्रदेश से।
0: समझ जी आपका भी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, बहुत ही लाजवाब गाना, सरोजी सेठी जी को धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो अपने धर्मेंद्र मोहन भारती जी का मैं प्ले करने वाला हूँ। सुनना चाहते हैं फिल्म स्वर्ग से सुंदर का ये गाना, ओ तो मैंने झूठ बोला था, ओहो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

तुमसे प्यार करूं, मैं और तुमसे प्यार करूं, इस धोखे में मत रहना।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार। जो दीवाना बनाते बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं। निशांत राय बोले जी जुड़ चुके, लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और दत्तक्रम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है दत्तक्रम जी। और सोनू गौतम जी लिखते हैं, अरे वाह वो तो मैंने झूठ बोला था, गाना मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और प्रियंका जी क्या कहती है?

0: जब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, शुक्रिया।
1: ओके जी, और यहाँ पे एम ताहिर साहब जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि अमन जी आदाब, आपकी इस बेमिसाल आमद और ये तय वक्त से एक हफ्ते पहले महफिल सजाने के लिए दिल के घर से इस्तकबाल है। आपकी इस यानी पुरबहार वापसी ने हमारी सारी उम्मीदों को रोशन कर दिया है। खैर मकदम है आपका इस इस्तकबालिया मंच पर, जहाँ आपकी इस सरप्राइज एंट्री ने हमारी हर हसरत और मसरत को दुगुना कर दिया। ओ थैंक यू सो मच सर जी, आपके इतने प्यारे प्यारे अल्फाज के लिए। और मीना इब्राहिम जी लिखते हैं, वाह बहुत खूबसूरत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आगे सुनकर। अशोक कुमार लिखते हैं कि ये किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में फिल्म स्वर्ग से सुंदर का शानदार गीत सुनने में मिला, मजा आ गया है। और सीता सिन्हा जी लिखते हैं कि स्वर्ग से सुंदर गाना, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आया। और अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अजय भगत जी। अगला जो डिमांड है वो आरजे वंशिका जी का है, ये सुनना चाहती हैं, ये पर्दा हटा दो। हाँ तो मुखड़ा दिखा दो, इंजॉय कीजिए गाने को।
2: ये पर्दा हटा

0: जहां मिले दो जवान नजर होती तक।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना था। आरजे पंचरा जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहां पे हम टाइम साहब लिखते हैं कि आरजे पंचरा जी की पसंद भी नायाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड है वो हमारे शाहिद अंसारी जी का है। शाहिद अंसारी जी सुनना चाहते हैं मुझसे मत पूछो सनम, मुझसे मत पूछो सनम, बिल्कुल मत पूछो, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल तुम मेरी जान लगते हो। वैसे यहाँ पे अशोक कुमार लिखते हैं कि 1969 के पैदान नंबर 10 पे बहने वाला आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज में और यानी कि प्रेम धवन के बोल को रवि जी का संगीत था, मजा गया गाना सुनकर। आरजे वंशिका जी की पसंद और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि आरजे वंशिका जी की पसंद बहुत ही लाजवाब लगी, धन्यवाद देते हैं उनको। मीना जी लिखते वाह आरजे वंशिका जी गाना सुनकर मजा आ गया है। अजय जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है और ये सुनते हैं क्या कहते हैं।

0: नहीं। ये प्यारा सॉन्ग हैगा,
1: अच्छा।
0: बहुत अच्छा हैगा।
1: अच्छा जी।
0: शुक्रिया अमन जी इस सॉन्ग को सुनाने के लिए। थैंक यू।
1: क्या बात है जी। और सरोज भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं?
2: आरजे अमन सर जी,
1: जी जी,
2: आरजे बंसीकार जी और शाहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए, दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।
1: वेलकम जी। इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले कर रहा हूँ वो हमारे जाकिर जी का है। जाकिर जी सुनना चाहते हैं वो तैयब अली प्यार के दुश्मन। हाय हाय, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: इसकी चाल तो देखो,
1: अरे रंग लगाया।
0: इसके बाल तो देखो,
1: अरे झूठे मोटे।
0: इसके दांत तो देखो।

0: वेलकम है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे नंदलाल जी। थैंक यू आरजे पंचिका जी का गाना मुझे लाजवाब लगा, उनको धन्यवाद देते हैं। और सर्वजीत सेठी जी क्या कहते हैं?
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिए उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: आरजे अमर सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और जुड़ चुके हैं हमसे यहाँ पे खुशबू जी, बहुत बहुत वेलकम है खुशबू जी आपका। और शाहिद जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए और सॉन्ग ऑफ द डे का विनर बनाने के लिए, और सभी दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, मजा आ गया सुन के। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1977 के मैदान नंबर 41 पर बजने वाला ये गीत रफी साहब की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत पैराल का संगीत, फिल्म अमर अकबर एंथोनी जी, सही कहा आपने। और मीना इब्राहिम लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के इस गाने को सुन के। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मंगेश देशमुख जी का है, ये सुना चाहते हैं, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। और ओ मेरी महबूबा, ध्यान से सुनिए गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मेरे पास आ चुके हैं और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
1: अजय अमन सर जी मंगेश देशमुख जी अपने गाने में शामिल किए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी और जाकिर जी लेते हैं, थैंक यू अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। निशांत अब लिखते हैं गाना बहुत ही लाजवाब है। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद मंगेश देशमुख जी खूबसूरत गाना सुनवाने के लिए, मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। प्रियंका जी क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
2: अमन जी ये सॉन्ग भी बहुत ही प्यारा था, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, बहुत ही सुंदर सॉन्ग, शुक्रिया।
0: ओके जी और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू मेरा फरमाइश प्ले करने के लिए। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1977 के पैदान नंबर 3 पर धर्मवीर का शानदार गीत बजा था मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत कैरलाल जी का था जी। थैंक यू सो मच जानकारी के लिए। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मनीषा जी आपका भी। और सीता सिन्हा जी लिखती हैं कि रफी साहब के शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया है। सोनू गौतम जी लिखते हैं वो मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, गाना बहुत प्यारा लगा है। और कुंता बिना लिखते हैं कि अमन जी मैं भी जुड़ गई हूँ और सभी दोस्तों का नमस्कार है, नमस्कार वेलकम करते हैं आपका भी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ नंदलाल जी का है, नंदलाल जी सुनना चाहते हैं ये गाना, इंजॉय कीजिए इस गाने को। नंदलाल यादव जी

0: रिक्वेस्ट से मेरे पास फीडबैक आ चुके हैं और निशान साहब लिखते हैं कि गाना तो सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दत्ता जी लिखते हैं कि भाई नंदलाल जी आपका गाना बहुत ही अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
1: अर्जय अमान सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। एम ताहिर जी लिखते हैं कि हाँ ओके ठीक है कोई बात नहीं। और फिलहाल नंदलाल जी देखेंगे अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए। अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो कायना जी का है और कायना जी सुनना चाहती हैं वादा करो ये वाला गाना, एंजॉय कीजिए। और स्पेशली डेडिकेट है एम एन ताहिर जी को, उनके सरकार एम ताहिर जी को।

0: बिल्कुल भाई, मैं तो वादा करता हूँ, फिलहाल यहाँ मैं प्रियंका जी का फीडबैक सुनता हूँ।
1: अमन जी, ये जो सॉन्ग नंदलाल जी ने जो सॉन्ग सुनाया है वो काफी ही दिलचस्प सॉन्ग है, क्योंकि ये सॉन्ग तो हमने पहली बार ही सुना है।
0: मैंने भी पहली बार सुना है।
1: इस तरीके के भी सॉन्ग होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम आज सुना है। शुक्रिया नंदलाल जी, आपने इतना प्यारा सॉन्ग सुनाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हमने भी पहली बार ही सुना है। और ये फीडबैक सुनते हैं, क्या कहते हैं सर्वेश भगत
2: जी। अमन सर जी, कायनात जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। अशोक कुमार लिखते हैं कि ये कायनात जी की पसंद शानदार लगी है, और मैं भी वादा नहीं करता हूँ कि मैं रेल मतलब यानी रोज ही आऊंगा। फिलहाल आज मुझे जैसे टाइम मिला मैं आ चुका हूँ, 8:30 बजे तक ही मैं हूँ आज। और बहुत से दोस्तों की वैसे भी डिमांड छूट जाएगी तो आप लोग प्लीज नाराज ना होंगे। निशान जी लिखते हैं बहुत बढ़िया गाना है, धन्यवाद देते हैं। और मीना जी लिखते हैं वाओ, बहुत खूबसूरत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल डिमांड है, धन्यवाद। अगला जो डिमांड इसी बात पर, इस गाने का जो जवाब है वो भाई मुझे प्ले करना पड़ेगा एमजी ताहिर जी के रूप में। ये कहते हैं कि अमन जी सबसे पहले ये गीत में शामिल रहेंगे आप और आपकी सुंदरता की मुरत जी, उनके बाद आरजे आकांक्षा जी और आरजे वंशिका जी को भी डेडिकेट, और स्पेशली डेडिकेट है मैजिकल गर्ल कायनात जी को। और कुछ दोस्त हैं हमारे वो यानी कि दुलारा भाई है, सोनू गौतम जी, सुनील कुमार जी और प्रियंका जी और प्रिंस पासवान जी और सुशील कुमार जी, जितने भी सुन रहे हैं सभी को मेरा गाना डेडिकेट है, तो सुनवा दिया। एंजॉय कीजिए, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

क्यों स्टॉप हो गया समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, पता नहीं इनका स्टॉप हो गया है या तो मतलब कुछ नेटवर्क इशू है क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ओके जी, हाँ फिर से।

0: जाओ जाके ले लो जो भी दे दे तुम्हें। हाँ जहाँ सब है वहाँ मैं भी हूँ। कायना जी, ये सॉन्ग आपका बहुत ही प्यारा था जो कि दिल को छूने वाला था। शुक्रिया इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, धन्यवाद अपना फीडबैक देने के लिए। और यहाँ पे सहिता जी लिखते हैं कि आज का लाजवाब गीत सुनने में मजा आ गया, धन्यवाद देते हैं। और अशोक कुमार लिखते हैं कि अमर अकबर धोनी का एक और शानदार गीत, मजा आ गया है। और अगला जो यहाँ पे एम ताहिर जी लिखते हैं कि आपने मेरी पसंद का गीत नगमा प्ले करके बहुत

आपके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कैनाज जी के भी पसंद दिलकश, और क्या ही कहें, वादा करो वाला नगमा ने सतमु और हसीन बना दिया है, उनको भी बहुत शुक्रिया। आत्मराम जी देखते हैं कि अमन जी आज के सभी गाने बैक टू बैक बहुत अच्छे प्ले हो रहे हैं। और शिल्पा बहन जी देखते हैं कि हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, गाना अच्छा लगे। अगला जो गाना मैं डेडिकेट, सॉरी मुझे गाना आ रहा है याद, मैं उसको इन्हें प्ले करने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं प्ले करूंगा, इंजॉय कीजिए, फिर आते हैं तो अगला डिमांड करें।

बिल्कुल, और ये मतलब मुझे अचानक से याद आया कि इस गाने को यहाँ प्ले करना चाहिए, तो मैंने प्ले कर दिया। वैसे मंगेश देशमुख जी कहते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा है, और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। और नीतू शरण जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और मनीषा जी लिखते हैं कि बेहतरीन सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और अशोक कुमार लिखते हैं कि रेखा और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ ये गीत 1980 के पायदान नंबर 4 पे गया था सर, और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राजेश रोशन के संगीत में मिस्टर नटवरलाल का शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया है। और प्रियंका जी क्या कहती है?

0: बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो कि रेखा जी का है। शुक्रिया।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और शिल्पा बहन जी देते हैं कि ये परदेसी वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, धन्यवाद देते हैं। और एम ताहिर जी देते हैं कि अमन जी आपका ये गीत सुंदरता की मुझे डेडिकेट, हाँ वो तो उन्हीं को डेडिकेट रहता है ना मेरा गीत। और सीता जी लेते हैं कि मिशन नेटवर्क का गीत बेहतरीन सुनने को मिला, मजा आ गया है। और निशांत राय बोले कि बहुत ही प्यारा गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आत्मराम जी क्या कहते हैं?
2: काला पत्थर मुझे का शानदार गीत सुनकर अच्छा लगा। आत्माराम बड़ी।
1: ओके जी, तो आत्माराम जी ये यानी कि काला पत्थर का गाना नहीं था, ये था मिस्टर नेटवर लाल का गाना था। वैसे अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और ये पसंद है हमारे यानी कि काजल झक्का जी का, और सुनना चाहती हैं मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इंजॉय कीजिए, सुनवा दिया।

0: वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं माय गॉड, और यहाँ पे कुंता जी देंगे बहुत ही शानदार डिमांड के लिए, थैंक यू सो मच। ओके जी, और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
1: आरजे अमन सर जी,
0: जी
1: आपका गाना और काजल झा जी गाने में शामिल किए हैं, दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, और यहाँ पे सरिता जी लिखते हैं कि ये काजल जी के पसंद सुनकर मजा आ गया है, फिल्म ये बारिश का गाना। मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हुई इतनी सनम, बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए धन्यवाद। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद काजल जी, आपकी पसंद लाजवाब लगी है। और मीना जी लिखते हैं वाह क्या गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। अशोक कुमार लिखते हैं कि बारिश का गाना सुपरहिट लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और एम ताहिर जी लिखते हैं कि ये काजल झक्का जी, आपकी ये नजरे इनायत और संगीत की दुहानी पसंद इस बात की गवाही है कि आपके दिल में क्लासिकल ये क्लासिकल नगमों के लिए बेपनाह कदर और बसरत है। मेरे प्यार की उम्र इतनी सनम जैसे वो लसानी गीत चुनकर अपने महफिल में मोहब्बत के रंग बिखेर दिए हैं, और आपकी ये जरा नवाजी इस महफिल में रौनक और बढ़ा दिया है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और सोनू गौतम लेते हैं कि काजल झका जी के पसंद एकदम लाजवाब लगी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और गीता शरण जी जुड़ चुके लिखते हैं कि बारिश का गाना मुझे शानदार लगा है। शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, एक्सीलेंट सॉन्ग, ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और ये फीडबैक,
2: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
0: ओके जी, और इसी बात का अगला जो डिमांड है वो यानी पूजा भास्कर जी का है, और सुनना चाहती है ये गाना, एंजॉय कीजिए।

खेच लाया है, तेरा प्यार चले आया और हम भी चले आए हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और यहाँ पे फिर देखिए बहुत से आ चुके हैं और प्रीति दादा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। वेलकम है प्रीति दादा जी। और यहाँ पे शेख इंताजिम जी जुट

0: हम अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हैं कि सभी दोस्त मेरी आवाज सुनकर चले आए हैं। सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और कोटि कोटि एक बार फिर से सभी का नमस्कार है। आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है। मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सोनू गौतम जी लिखते हैं कि ये पूजा भास्कर जी की डिमांड पसंद लाजवाब, बहुत बहुत उनको धन्यवाद, मजा आ गया है। आत्माराम जी लिखते हैं कि अच्छा कुछ कहते हैं
1: काला पत्थर मई का,
0: अच्छा ये तो हो चुका है यानी काला पत्थर वाला शायद। और यहाँ पे अशोक कुमार लिखते हैं कि ये पहली बार गाना सुना मजा आ गया, अगला सुनिए वो भी बहुत अच्छा है, नीतू जी की पसंद है। और नीतू जी ये सुनना चाहती है यानी कामचोर का गाना, नीतू यानी कि नीतू नाम है नीतू शरण जी, ये सुनना चाहती है वो तुमसे बढ़कर दुनिया में, ये वाला गाना एंजॉय कीजिए नीतू शरण।

0: वेलकम है कॉमेडी हॉट स्टार जो दीवाना बना दे और राम के जी लेते हैं लाजवाब गाना। धन्यवाद देते हैं आपको और अशोक कुमार लेते हैं फिल्म निकामचोर का गाना शानदार मजा आ गया। धन्यवाद देते हैं और यहाँ पे क्या कहती है प्रियंका जी।
1: तू ही थी वो ख्वाबों में

0: नाइस सॉन्ग।
1: ओके जी और सरोजा जी,
2: अर्जय मसा जी, नीतू सरन जी और पूजा जी अपने गाने में शामिल किए दोनों बहन, अपने अपने गाने में शामिल किए दोनों बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर,
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे खुल जा हम यहाँ पे गीता जी लिखते हैं कि ये नीतू जी का गाना बहुत ही शानदार पसंद है और नीतू जी लिखते हैं कि गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ यहाँ पे शिल्पा बहन जी लेते हैं कि ये तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और बहुत ही शानदार पसंद है और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
3: आज के प्रोग्राम में बहुत तर लता दीदी के गाने ही आने वाले हैं। अच्छा। और आएंगे आत्माराम पाटिल।
1: धन्यवाद देते हैं। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो है ये जय किशोर इन प्रसाद जी का। जय किशोर प्रसाद जी सुनना चाहते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है। बिल्कुल वो जादू है।

0: पाना तुझको मुश्किल ही सही, पानी को मचल जाता।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये पाना तुझको बहुत मुश्किल है लेकिन पाने को मचल जाता हूँ मैं। और कुंता जी लेते हैं कि लाजवाब विमान के लिए थैंक यू सो मच। और प्रकाश जी लेते हैं गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेलकम करते हैं आपका भी। गजानंद जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं आपका भी। और क्या कहते हैं रामकेश जी,
2: तू जो एक नजर डाले जी उठी मरने वाले। बहुत ही लाजवाब सॉन्ग जय किशोर जी, आपकी पसंद का सॉन्ग मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग। धन्यवाद, मैं रामकेश फरीदाबाद हरियाणा से।
1: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और काजल सका जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
3: दुनिया की इस भीड़ में मुझे आपका साथ चाहिए, दुनिया के इस भीड़ में मुझे आपका साथ चाहिए, मेरे हाथों में हमेशा आपका हाथ चाहिए, मेरे हाथों में हमेशा आपका हाथ चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए, सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आपकी ही जज्बात चाहिए, आपकी ही जज्बात चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाना बजा देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। सभी दोस्तों का फीडबैक बहुत अच्छे अच्छे थे, तो सभी दोस्तों को बहुत ही बाराबंगा दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको भी बहुत ही बाराबंगा शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं काजल सीतामढ़ी से।
1: ओके जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ यहाँ पे यानी प्रियंका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और ये फीडबैक सुनते क्या कहते हैं भाई।
4: अमन सर जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सलीम सीतापुर से, मुझे भी एक सॉन्ग सुना।
1: और उसके लिए आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजना पड़ेगा जी। बिल्कुल, मीना जी लेते हैं वाओ बहुत ही प्यारी डिमांड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अनिल नायक जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अनिल नायक जी आपका भी। और अशोक कुमार लिखते हैं कि 1975 के पैदान नंबर 31 पर बजने वाला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, इन जीवर के बोल और संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म धर्मात्मा मजा आ गया सुनकर। बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और बिरजू जी क्या कहते हैं भाई, इनकी सुनते हैं।
5: अमन सर मैं भी जुड़ चुका हूँ बिरजू मूर्तिकार जिला सोनभद्र गांव सरंगा से, गाना बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं
1: जी, धन्यवाद देते हैं। और मेरा भी एक दोस्त था, मतलब था यानी कि अभी भी है लेकिन वो इन पता नहीं कहाँ है, उससे मेरी मतलब वो मेरा यानी कि पेन फ्रेंड था, मतलब यानी पेन फ्रेंड का अर्थ ये हुआ कि हम लोग यानी कि पोस्ट कार्ड के जरिए एक दूसरे से इन बातें किया करते थे। और मैं भी पढ़ता था वो राज कमिक्स यानी ध्रुव यानी वो नागराज डोगा वगैरह वगैरह के जो था ना कमिक्स, वो मैं पढ़ा करता था, मुझे अच्छा लगता था। और उसे ही उसी से मुझे उससे दोस्ती हुई थी, वो भी यानी कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का था लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है, उसे मेरी बात ही नहीं होती है, जानता भी नहीं हूँ। उसका नाम था यानी कि तौसीफ। फिलहाल यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि वो तेरे चेहरे में जादू है किशोर कुमार की आवाज़ में गाना अच्छा लगा। शिल्पा बेन लिखते हैं कि तेरे चेहरे में जादू है गाना बहुत ही प्यारा। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ ज्योति खटवड़े जी का है, ज्योति खटवड़े जी सुनना चाहती हैं, बहुत ही प्यारा गाना, इंजॉय कीजिए।

0: मेरे तुम हो मेरे सिर्फ तुम हो मेरे और यहाँ फिर
1: आरजे अमर सर जी ज्योति खटपटे जी अपने गाने में शामिल किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी धन्यवाद देते हैं थैंक यू सर
0: वेलकम जी आपका भी और राम के जी लेते हैं ज्योति जी आपकी पसंद बहुत अच्छी लगी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको मजा गया गाना सुनकर और ज्योति जी लिखते हैं थैंक यू अमन जी आपने मेरा गाना प्ले किया धन्यवाद और मनीषा जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग है ज्योति जी थैंक यू सो मच सुनवाने के लिए और गोविंदा खन्ना जी जुड़ चुके बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी और प्रियंका जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है धन्यवाद और यहाँ पे कुंता बिन लिखते हैं कि थैंक यू सो मच ज्योति खटवड़े जी इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए और ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं भाई
2: तो अमन सर जी कैसे गाना भेजे तो मेरा गाना बचेगा हमको आप ये बताइए
0: हाँ मैं आपको बताता हूँ कि रेडियो हॉटस्टार का ऐप खोलिए फिलहाल सबसे नीचे लिखा होगा मोर दाहिने साइड में वहाँ पे क्लिक कीजिए पहला ऑप्शन आएगा सॉन्ग रिक्वेस्ट वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट ओके फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ सर्वेश भागा जी अशोक दशमुख जी आत्मराम पाटिल जी के पसंद
1: अरजय अमन सर जी शुभ संध्या नमस्कार नमस्ते जी नमस्ते। आज हमारा फरमाइश का फिल्म है बेमिसाल और गाना कितनी खूबसूरत है ये कश्मीर है हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे सभी बड़े को प्रणाम सभी छोटे को आशीर्वाद हम सर्वेश भगत अजरजंदा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत बहुत पर बहुत आनंद से करी कुमार मनु कुमारी सूरज कुमार मनोज जयसवाल अशोक देशमुख जी आत्माराम पाटिल जी सैयद दुनू जी और संतोष कुमार जी मुन्ना जी आरजे अमन सर जी सुंदरता की मूर्त जी आरजे वंशिका जी आरजे आकांक्षा जी आरजे एमएस परमार जी आरजे आदिति जी आरजे सोनी जी आरजे रत्ना जी और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर इसमें शामिल है

0: बिल्कुल बहुत ही प्यारी वो तस्वीर है। और एक गाना मुझे याद आ गया, यानी कि तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, गाना सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और फीडबैक सुन करते हैं।
1: अरजे अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू। हमारा तीन भाई का फरमाइश, हमारा अशोक देशमुख जी और तुम्हारा पाटे जी अपने प्रोग्राम में जगह दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और शिल्पा बेंच लेते हैं, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत बहुत बढ़िया गाना लगा। अशोक कुमार लिखते हैं कि बेमिसाल का गाना, सुपर हिट, सुनने को मिला, मजा आ गया है। और बाबूलाल जी लेते हैं कि बहुत ही प्यारी डिमांड, सर्वेश भगत जी, आत्माराम जी, अशोक देशमुख जी, मंगेश जी देशमुख जी लेते हैं कि धन्यवाद मिली जुली पसंद सुनवाने के लिए। शिल्पा बेंच लिखते हैं कि ये कश्मीर है गाना बहुत ही प्यारा है। और ये

0: अमन जी, वाकई में कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है। क्योंकि हम कश्मीर घूम के आए हैं, इसलिए कश्मीर बहुत ही सुंदर है।
1: और अगला जो डिमांड है वो है रितु जी का। रितु जी, एंजॉय कीजिए गाने को।

0: वेलकम एक रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे और बहुत सारे फीडबैक है। मिशाल अंगद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मिशाल अंगद जी आपका भी और प्रकाश जी के सुपर सॉन्ग के लिए धन्यवाद। और गजन जी लेते हैं आदरणीय अशोक देशमुख जी, सुरेश भगत जी, आत्माराम पांडे जी के पसंद बहुत ही पहले लगी है उनको धन्यवाद। रामकेश जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, मजा आ गया सुन के। और कुत्ता जी लिखते हैं कि आदरणीय सुरेश भगत जी, आत्माराम जी और सुरेश भगत जी सॉरी अशोक देशमुख जी की डिमांड अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं। अशोक कुमार जी लिखते हैं कि यह खानदान का गाना शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है, फीडबैक सुनते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, नीतू सरन जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे विलास निकम सर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। मनीषा जी लिखते हैं कि ओके फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि प्रकाश जी का, प्रकाश जी सुनना चाहते हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। हाँ ना, बहुत किया है लेकिन क्या करूँ।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। अशोक कुमार लिखते हैं धर्मात्मा का एक और शानदार गीत मिला, सुनने को मजा आ गया है। और प्रकाश जी क्या कहते हैं?
1: तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार

0: किया है। अमन सर मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए धन्यवाद।
1: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मनीषा जी लेते हैं, वाह क्या गाना है, मुझे गाना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। नंदलाल जी लेते हैं, बहुत ही बेस्ट गाना सुनवाने के लिए, धन्यवाद। अगला जो डिमांड है वो आमना खान जी का, आमना खान जी सुनना चाहते हैं मुगले आजम का बहुत ही प्यारा गाना, जब प्यार किया तो डरना।

0: बिल्कुल यानी प्यार किया तो डरना क्या, वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड के लिए थैंक यू सो मच अमना जी, और ये फीडबैक सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, अमना खान जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे प्रकाश जी लिखते हैं कि बहुत सुपरहिट डिमांड है, और राम के जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। गजानंद जी लिखते हैं आमना जी की पसंद ये बहुत ही प्यारी लगी है, बहुत बहुत बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस गाने के लिए। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1960 के मैदान नंबर 4 पे बजने वाला मुगले आजम का गीत बहुत प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं, और ये फीडबैक सुनते हैं उनकी।

0: क्या जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
1: ओके जी, और इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, अशोक पाल जी का सुनना चाहते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। अरे हमको किसी का डर नहीं है जी, क्या है, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल। और
1: यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये पसंद बहुत लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते इस गाने के लिए, ये फिर वैसे सुनते हैं।
2: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, सेज से कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला वो डिम्पी जी का। डिम्पी जी सुनना चाहती हैं, मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं, ओह माय गॉड।

तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कैसे समझाऊँ कि सिर्फ तुम ही तो हो, मेरी सुंदरता की मूरत, मेरी जान, मेरी धड़कन, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मतलब सब कुछ तुम ही तो हो। वैसे फीडबैक मेरे पास बहुत सारे आए हुए हैं। बलदेव राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और काजल झका जी देखेंगे, हाँ मैं आपकी शायरी का जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ऐसा मैं और भी कामों में बिजी हूँ यहाँ पे। और कुंता जी देखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, थैंक यू
1: जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे और भी फीडबैक है, जरा सर मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। गजानंद जी लिखते हैं कि मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश ना कर, गाना बहुत ही प्यारा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने को। ओके, और इसके बाद से ये क्या कहते हैं भाई, खुल जा बाबा सुन सिंह। आमना जी लिखते हैं कि आपने मेरा गाना प्ले किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों का भी शुक्रिया फीडबैक देने के लिए और गाने को पसंद करने के लिए। ये आपका गाना इतना प्यारा था, 1960 का, वो भी मुगले आजम, उस यानी कि जमाने का सबसे महान फिल्म। अब उसके बाद तो हम क्या ही बताएं, उसको दोबारा मतलब रिलीज किया गया, वो भी रंगीन में, यानी पहले तो था यानी कि ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा उसको बनाया गया है। तो ताकि जाहिर सी बात है कि भाई फिल्म भी लाजवाब, का गाना तो लाजवाब होगा ही। इसके बाद अगला जो मैं डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो यानी वो डिमांड है यानी कि खुशबू जी का, और ये सुनना चाहती हैं दिल में हो तुम, इंजॉय कीजिए।

सांसों में तुम, मतलब रोम रोम में तुम ही तो समय हो। फिलहाल फीडबैक शामिल करते हैं।

0: ही प्यारा सॉन्ग था
1: जी जी बिल्कुल। और यहाँ पे सरोज भगत देखते हैं कि
2: अर्जय अमन सर जी खुशबू जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
1: वेलकम जी आपका। और यहाँ पे रामकेजली सिंह के दिल में है, ये दिल छू गया ये गाना सच में। और गजानन जी लेते दिल में है तू गाना बहुत ही लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। मनीषा जी लेते थैंक यू सो मच इन खुशबू जी मेरा फेवरेट गाना सुनवाने के लिए, धन्यवाद देते हैं आपको। और मीना इब्राहिम लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत नगमा है, दिल खुश कर दिया आपने। और ओके फिलहाल अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ राहुल पासी जी का, सुनना चाहते हैं मैंने रब से तुझे मांग लिया, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बहुत बहुत ही प्यारा गाना, सच में मजा आ गया सुनकर। और ज्योति जी लेते हैं कि सभी सॉन्ग लाजवाब चल रहे हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं दिल से इतने प्यारे प्यारे गाने सुनवाने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं, राहुल पासी जी आपकी पसंद मुझे अच्छी लगी है, मैंने रब से तुझे मांग लिया फिल्म यानी कर्मा का लाजवाब गाना। अशोक कुमार लिखते हैं फिल्म यानी कर्मा का सुपेट गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुनकर। और एक फीडबैक,
1: राहुल जी आपकी पसंद का ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, आपको दिल से धन्यवाद इस सॉन्ग के लिए। मैं रामकेश फरीदाबाद हरियाणा से।
0: ओके जी, और यहाँ पे सीता सिन्हा जी देते हैं कि ये फिल्म निकी कर्मा का बहुत बेहतरीन नगमा, मजा आ गया। फीडबैक सुनते हैं प्रियंका जी।

0: सॉन्ग श्रीदेवी का है जो कि काफी अच्छा है। शुक्रिया इतना प्यारा सॉन्ग सुनाने के लिए।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी देते हैं धन्यवाद अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, राहुल पासी जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
1: वेलकम जी आपका भी। और मीना जी देते हैं बहुत खूबसूरत गाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि महाराज जी देते हैं कि हम भी जुड़े हैं जी, वेलकम करते हैं, क्योंकि अभी आप अगला जो गाना आने वाला है वो रवि महाराज जी, मिसाल अंगद जी और गजानंद सुरकार जी का वो मतलब यानी गाना है। तो एंजॉय कीजिए आप सभी की डिमांड।

वेलकम एक और रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाने का जनम जी लिखते हैं कि आदरणीय अम्मा जी को प्यार नमस्कार है। गाना प्ले करने के लिए धन्यवाद है। मंगी दशमुख जी लिखते हैं गोल्ड इज गोल्ड, बहुत ही प्यारा गाना लगा। और अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, जो आज के यानी विनर बने हुए हैं हमारे शाहिद अंसारी जी, उनका गाना जो है वो मैं प्ले करता हूँ, तो इंजॉय कीजिए उस गाने को।

0: जाने ना हम। वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और वैसे मेरे पास फीडबैक है, शामिल करता हूँ मैं किनका है। तो ये मिसालंगा जी, अच्छा मिसालंगा जी का फीडबैक है, सुनते हैं क्या करते हैं।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: मैं मिसाल अंगद बीड महाराष्ट्र से आपके लाइव कार्यक्रम में फीडबैक दे रहा हूं। और अमन सर जी, आपने मेरा गाना अभी सुनवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गजानन सालोकार जी ने उनके गाने में मुझे याद किया, तो मैं गजानन सालोकार जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अमन सर जी, आज का कार्यक्रम शानदार कार्यक्रम,
0: धन्यवाद देते हैं आपका भी। और यहाँ पे राहुल पासी जी कहते हैं कि मैं गलियों का राजा वाला गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। अशोक कुमार लिखते हैं कि धर्मवीर का एक और सुपरहिट शानदार गाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और रवि महाराज जी क्या कहते हैं, इनके सुनते हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों का भी तहे दिल से शुक्रिया फीडबैक देने के लिए। मैं रवि मोहाड़े, बैतूल मध्य प्रदेश।
0: ओके जी। और यहाँ पे कुंता जी लेते गजानन जी का वो ग्रुप का डिमांड शानदार लगा है, उनको भी धन्यवाद। गजानन जी लेते शाहिद अंसारी जी के पसंद बहुत ही प्यारी लगी है। राम के जी लेते हैं कि गजानन जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारा है। अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो ये प्रीति रायदास जी का है, सुनना चाहती है फिल्म पत्थर के शरम से ये गीत। इंजॉय कीजिए।

अच्छा इसमें एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने गाना डाउनलोड किया है वहाँ पे यानी पत्थर के सनम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जबकि ये है फिल्म मेरी धरती कहे पुकार से। ओछे कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने गाना डाउनलोड किया है वो मुझे पत्थर के सनम से मिला है। पता नहीं गलती कहाँ है, मुझ में है या

और जाना तो पड़ेगा क्योंकि टाइम होने वाला है। और प्रीति रायता जी देंगे, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और ये कहती है कि धरती कहे पुकार से गाना है जी, ओके कोई बात नहीं, फिलहाल हो सकता है कि मुझे गलती हो गई है, लेकिन मुझे जहाँ से मिला है मैंने वही नाम लिया है। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि ये यानी कि प्रीति रायता जी का डिमांड बहुत अच्छा लगा है, उनको धन्यवाद। और ये फीडबैक सुनते हैं।

0: बंधे एक ढोरी से जइयो कहाँ आए हजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ आए हजूर। बहुत ही प्यारा सॉन्ग,
1: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और यहाँ पे कुंता बनर्जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड के लिए थैंक यू सो मच आपका प्रीति रायदास जी। अशोक कुमार लिखते हैं कि 1969 के पैदान नंबर 9 पे बजने वाला ये गीत फिल्म धरती कहे पुकार की शानदार गीत सुनने को मिला, मजा आ गया जी, कन्फर्म हो गया क्योंकि आपने बता दिया है। और गजानन जी लिखते हैं कि जी हम तुम चोरी से, यानी कि लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में शानदार गाना, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि ये नीचे प्रीति रायदास जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, उनको बहुत शुक्रिया। अगला जो डिमांड है मनीषा शर्मा जी का है, वो सुनना चाहती हैं, जख्मों को हवा दोगे मेरी याद आएगी।

0: और उम्मीद करते हैं कि शायद मैं इसे ज्यादा नहीं प्ले कर पाऊंगा क्योंकि समय निकला जा रहा है। और वैसे थोड़ा सा मेरे पास मैं देखता हूँ मैं और यानी कितना रुक पाता हूँ, लेकिन ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। रामकृष्ण जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं उनको। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि मनीषा जी का गाना बहुत ही सुंदर लगा है, ये फीडबैक सुनते हैं क्या कहते हैं।
1: जख्मों को हवा दोगे तो मेरी याद आएगी, ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे सॉन्ग सब लोग लाते हैं जिनकी पसंद बहुत ही शानदार होती है। ये सॉन्ग भी फर्स्ट टाइम सुना है जो कि काफी अच्छा है।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपका भी। और यहाँ पे गजानन जी लिखते हैं कि मनीषा शर्मा जी आपके पसंद बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं आपको। और कभी कभी नेट इतना स्लो चलने लगता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ, आगे आने के बाद ही पीछे जाता है।

मैं जब तक इन्हें फीडबैक नहीं शामिल करूंगा क्योंकि नेट नहीं काम कर रहा है, तब तक मैं अगला जो डिमांड है वो मीना इब्राहिम जी का मैं प्ले कर रहा हूँ। मीना इब्राहिम जी, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और शिल्पा मिश्रा जी ने कि ये करोगे याद वाला गाना मुझे अच्छा लगा है। मनीषा जी ने कहा वेरी वेरी थैंक यू मुझे मेरा गाना प्ले करने के लिए। और दीपक मैं कह कर देते हैं कि ओ माय गॉड आपका भी छूट रहा है, बहुत दोस्तों का छूट रहा है। और अमीना जी लेते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरा रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए। अर्पिता जी लेते हैं कि मोहब्बत भी समझो तो एक कर्ज होता है, उसके बारे में सोचो तो बहुत दर्द होता है। और कभी हम भी हुआ करते थे जान उसकी, मगर थे और हैं में बहुत फर्क होता है। अरे नहीं जी, हम तो कहते हैं कि जो जान होता है वह जान ही होता है, वो थे नहीं होता है। और राहुल पासी जी लिखते हैं कि मीना इब्राहिम जी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद। अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो किन का कर दूँ, फिलहाल क्योंकि मैं जाने वाला हूँ जल्द से जल्द। यहाँ पे मुझे दिख रहा है गाना यानी कि रूपचंद गोयल जी का, सुनना चाहते हैं एक परदेसी मेरा दिल ले गया, एंजॉय कीजिए इस गाने का।

0: क्योंकि अब मुझे आरजे आकांक्षा जी का लाइन खोलना पड़ेगा क्योंकि वो 9 बजे से प्रोग्राम करने वाली है और मुझे अब चाहिए इजाजत। आखिरी गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ और आखिरी गाना होगा हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, लेकिन कुछ फिर देखे गजन जी लिखते हैं कि रूपचंद गोयल जी की पसंद मुझे अच्छी लगी है और ये सुन लेते हैं क्या कहती है। सुनिए भाई क्या।
1: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया, बड़ी बड़ी अखियों में आंसू दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। बहुत ही प्यारा सॉन्ग था ये, शुक्रिया।
0: ओके जी, और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत गाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी डिमांड है हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, एंजॉय कीजिए और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। तो मिलते हैं फिर कल शाम, सॉरी मैं यानी कि कल मिलूंगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है, जब भी आना होगा मैं नोटिफिकेशन देकर मैं जरूर आऊंगा। और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।
2: ए भाई।

सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मुझको खाना भी तो मिला है आधा, और इस आधे में से भी वो खा गया था।
1: खाना घर में थोड़ा खाने

में। हाँ।

नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी तुझे, दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं

शिकर, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।